0: 5858581.
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम, कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीजे के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860, 0300-585-8481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है।

0: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए। अगर कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
1: सारा दास दी आशुमान योखवा और तबलखवा कपड़ों शॉपिंग दपारबा तरसो मुंगा बाजारों की गर्जो।
2: ओ हो सरिया परेशान की गमा ददी मसले रासरा डे फेस्ता कल दी।
1: हाँ सो
2: अलसाइड क्लास हाउस एंड गवर्नमेंट सेंटर द सड़ो तपारा हाँ मायारी और वर्ड सुटी न मिलावेगी लक ग्रेस टाम टेक्स इडमानी पाशा अलकरम और नोर मल्टी नेशनल ब्रांड्स और जनानो दपारा मारिया बी मरीन सफायर निशा ऑपरेटेड लॉन होम मिलावेगी और दाला सके दमाशुमान दपारा हाँ फैंसी कपड़े हूँ मौजूद दी
1: मतलब।

0: आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए।
1: हमारे हसीन चेहरे का सीक्रेट नो टेंशन ब्यूटी क्रीम,
0: 5 डेज ब्यूटी प्लान के साथ लाए इतना निखार जो रहे हमेशा बरकरार बिना किसी साइड इफेक्ट के।
1: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम में मौजूद फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जिल्द को बनाए मुलायम और चमकदार,
0: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
1: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।
2: نقصان
3: لاڑم اس راوڑم
2: رافتے دفارہ 0334-940-9037।

सितारा ने याद किया है, फर्स्ट मैसेज किया भाई सितारा, थैंक यू सो मच। आपने कहा था कि एक लाख 25,000 सैलरी है मेरी, तो आप क्या करती है भाई, ऐसा क्या काम है कि आपको एक लाख से अबव सैलरी आपको मिल रही है। सलाम ब्रो तन्हा द चिंगले ना ब्रो साइलेंट जमा खजी खा खा खा।

तब टपकती है जब तुम्हारी याद आती है। इस बरस का तो कोई मौसम ही नहीं। अरे गत मिया रोश फ्राम अटक शो नाइस्ता डेरे ज्यादा मनना मैसेजों बस नोर मके सलाम स्पिन खान आर जे स्पग में करार अफरीदाए स्पिन खान दास्ता लिस्नर खोटूल अशिकान दी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नमासर उच वलो तनास्ती सलाम भाई मी सना फ्राम गदुरी द सना सिसर तमे प्रोग्राम ब्यूटीफुल हाय डियर मुबारक इजहार हाशमी फ्राम बाघ बुने ओइनन पा मिचे गुलाम की यमा प्रोग्राम नशम और दिले लिस्टर तलामुना इजहार कॉस्मेटिक्स एंड लेस सेंटर डॉक्टर फजले हादी क्लिनिक खारखन में بچے پروگرام نہ ہو رہے نو بس کال بہو کے السلام علیکم امشاز شو نائس گل بی بی شو خشتدا خشتدا کا خائستدا خجرے زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

तो बिल्कुल जनाब वही हाय हाय टू आई एम सिहान डेरा मनंदा सिहान खुशहाल हूँ उसे

0: Gala, y qué chévere, bra. काश लौट आता वो वक्त वो पुराने दिन, काश लौट आता वो वक्त वो पुराने दिन, जहां हंसी थी हमारी नती थी गम।
1: हाँ, काश माजी में भी कभी लौट के जाना होता, जो कहना था कभी आज वो कहना होता।
0: वाह वाह वाह वाह। आगे बढ़ते साथ साथ में
1: जी।
0: कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ ख्वाब टूट गए, हम माजी के रास्तों में खुद को ढूंढते रह गए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: जो गलतियां वक्त पर समझ न सके हम, आज वही सबक बनकर साथ चलते हैं।
1: हाँ,
0: हर दम। काश एक बार फिर वो जमाना मिल जाए, जो छूट गया शायद वो दोबारा न
1: अरे मतलब मकबरों जंगे तो पूछ

0: हम हंस तो रहे हैं मगर दिल के अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ है। हम हंस तो रहे हैं लेकिन मगर दिल के अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ है। कुछ लोग यादों में रह जाते हैं जिंदगी में नहीं।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय।
0: जिसे अपना समझा उसी ने तन्हा कर दिया, जिसे अपना समझा उसी ने तन्हा कर दिया। कभी कभी खामोशी आंसुओं से ज्यादा दर्द बयां करती है। वक्त गुजर जाता है मगर कुछ दर्द वहीं रह जाते हैं। वक्त गुजर जाता है मगर कुछ दर्द वहीं रह जाते हैं। हमने सबको खुश रखा बस खुद को भूल गए।
1: वाह वाह वाह जबरदस्त।
0: कुछ ख्वाब आंखों में नहीं दिल में दफन होते हैं। कुछ ख्वाब आंखों में नहीं दिल में दफन होते हैं। अब किसी से शिकायत नहीं बस खुद से थोड़ी सी नाराजी है। इच्छा कीजिए मेरे भाई।
1: हाँ वही करा। हम अगर लौट भी जाए तो कहाँ जाएंगे। हम अगर लौट भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वही चेहरे वही रिश्ते कहाँ पाएंगे। वक्त तो बीत गया लोग भी बिछड़ते गए। वक्त तो बीत गया लोग भी बिछड़ते गए। अपनी यादों के सिवा किसको बुलाएंगे। वर्जफी।
0: थैंक यू। वो बदल गए और हम ये सोचते रहे कि शायद वक्त बदल जाए। वो बदल गए और हम ये सोचते रहे कि शायद वक्त बदल जाएगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान किसी को खोकर भी उसे बुला नहीं पाता।
1: वाह वाह।
0: मिस्टर टैमंगसरा
1: कुछ सवालात थे जो वक्त के साथ मर न सके। कुछ सवालात थे जो वक्त के साथ मर न सके। कुछ ताल्लुक थे जो चाह कर भी बिछड़ न सके। हमने तो समझा था बुला देंगे गुजरे लम्हे मगर कुछ लोगों के दिलों से कभी उतर न सकेंगे।
0: वाह वाह वाह वाह। मैं लास्ट में एक शेर इंक्लूड करना चाहता हूँ। दिल तो आज भी वही है बस यकीन खत्म हो गया। दिल तो आज भी वही है बस यकीन खत्म हो गया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ खामोशी समझती है।
1: माजी की तरफ देख के इतना समझ आया। माजी की तरफ देख के इतना समझ आया। हर शख्स ने हमें कुछ न कुछ सिखाया। कोई छोड़ गया तो जीना सिखा गया। कोई ठहर गया तो मोहब्बत सिखा गया।
0: वाह वाह वाह। लास्ट शेर में इंक्लूड करना चाहता हूँ फिर टाइम
1: खत्म। बस बस।
0: मुस्कुराना सीख लिया है खुश रहना भी बाकी है।
1: मुस्कुराना
0: सीख लिया है खुश रहना भी बाकी है। जिस दिन उम्मीद खत्म हुई उसी दिन इंतजार भी।
1: हाँ जबरदस्त। हमने खुद अपने हाथों से कई ख्वाब